नया वर्ष को अवसर में सेंसई का होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैश बैक। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ इंस्टेंट कैश बैक पनी, र बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

एप्लायंसर को खरीदमा कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट्स। वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैजिक, डिशवॉशर में वॉशिंग टैबलेट्स, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन र फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

0: समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितौन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7070 61 र 98 5550 7053।
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप, डायग्नोसिस, ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन। फोन 0556 4940 4493 580 र 98 5550 2640।
3: It's 11 o'clock. अहिले 11 बजेको छ।

0: बड़ी वॉलेट माँ।
1: नेपाल को कुने पनी बैंक खाता माँ वहाँ 45,000 भन्दा बड़ी IME काउंटर मार्फत
0: आफन्त को हाथ हाथ माँ पुर्याउन IME गरौँ।
1: 25 वर्ष देखि सारा नेपाली को विश्वास IME गरौँ।

0: हैप्पी वॉलेट माँ।
1: नेपाल को कुने पनी बैंक खाता माँ वा 45,000 भन्दा बड़ी IME काउंटर मार्फत
0: आफन्त को हाथ हाथ माँ पुर्याउन IME गरौं।
1: 25 वर्ष देखि सारा नेपाली को विश्वास IME गरौं।

0: टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ में
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7070 61 र 98 5550 7053।
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप, डायग्नोसिस, ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन। फोन 0556 4940 4993 580 र 98 5550 2640।
0: It's 2 o'clock. अहिले 2 बजेको छ।

0: तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज।
1: हर घर हुनेछ अयोध्या, हर घरमा प्रकट हुनेछन् राम। बन्नुहोस् साक्षी गाथा रामायणको नेपाली भाषामा हरेक बिहिबार र शुक्रबार राति 8 बजे मात्र विश्वको रमाइलो टिभीमा।
2: नयाँ वर्ष 2083 सैमसंग ग्लोबल नंबर 1 टीवी र होम अप्लायंस में 25% सम्म छूट पाउनुहोस्। ₹50,000 भन्दा माथिका अप्लायंस को खरीद में नागरिकता के आधार में 24 महीना सम्म को ईएमआई उपलब्ध छ। चुनिएका वाशिंग मशीन में 6 केजी सर्फ एक्सेलमेटिक निःशुल्क र टीवी में 12 महीना सम्म को नेट टीवी पैकेज निःशुल्क पाउनुहोस्। सैमसंग सँगै यो नयाँ वर्ष में स्मार्ट घर स्मार्ट शुरुआत। शर्तहरु लागू हुने छन्। यो योजना सीमित अवधि का लागि चुनित मोडल में मात्र लागू। 24 महीना को ईएमआई में 7.99% ब्याज लागू हुनेछ।
3: Isn't it amazing when the internet just works? For binge watcher to binge shoppers. For the dancing shoes to midnight truce. Speed the juice. For the weird poses and funny noses. Baking spaces to messy faces. We are Subisu Internet. Subisu, gig fiber, exceeding expectation.
4: सीधा कुरा प्रश्न विचार
5: उज्यालो रेडियो नेटवर्क।
6: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। अब सुन्न सक्नुहुन्छ लोकलहरी।

कार्यक्रम को मुख्य आकर्षण चर्चित लोकदोहोरी एवं भजन गायक प्रकाश पराजुली को भजन र लोकदोहोरी प्रस्तुति। मिति यही ज्येष्ठ 2 गते शनिबार शनि जयंती पर्व कै दिन। शनिधाम दर्शन गरौं, शनि जयन्ती उत्सवमा सहभागी बनौं र सफल

0: टाइम चेक इस समय सूचक का साथ मा
1: दक्षिण कोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 550 7071 र 98 550 7073
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 स्थित वन फोन 0556 4940 4493 580 र 98 550 2640
3: It's 6 o'clock. अहिले 6 बजेको छ.
4: A complete piping solutions.

0: कार्यक्रम को मुख्य आकर्षण चर्चित लोक दोहोरी एवं भजन गायक प्रकाश पराजुली को भजन र लोक दोहोरी प्रस्तुति। मिति यही ज्येष्ठ 2 गते शनिबार शनि जयंती पर्व कै दिन। शनि धाम दर्शन गरौं, शनि जयंती उत्सव में सहभागी बनौं र सफल पारौं। माडीको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन का निम्ति शनि जयंती पर्व को अवसर पारी शनि धाम सगौरव प्रस्तुत गर्दछ। 11 शनि जयंती उत्सव विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम रमाइलो मेला साथ में नगर स्तरीय भजन र दुना टपरी बनाउने प्रतियोगिता 2083। खबर तपाईको अधिकार अनि तपाईको अपरिहार्यता।
1: तपाई हाम्रै गाउँघरको खबर अनि सत्य तथ्य सन्तुलित र विश्वसनीय खबर स्वदेश खबर।